0: सुमा, तब टिकक महान सेला मैं पहले उगुला ना भला की ना आटी टिकक जानने बे हाथी मैं वाकी काम में ली राल की निक मम्मी मैं अम्मा पापा खाओ दावत देखला ना
1: हाँ मैं लोक का हम तो ऐसे वो माता बाबा इन्हें तो लोक का पोटा कुस्ता अगल बालान ना कोया वो कटिंग के ना हम वो बातले वो मूल्ला दी नहीं
0: अन्य अम्बी मैं देंगे वो तमुंगे किया भी लब बहुमा वैटे इधर सुमारे मैं हट देनो वो पहले मैं हट देनो पहले
1: एक ने वे लोक का
0: वे बार मुकद
1: मैं लोक का हेलिया ना विला गासुगुल्ला ने क्यों मिसा क्या तुले इच्छा किसी में अब माटे क्यों है नहीं
0: मैं डिशुमा अभी हितवा टवडा दिया कुं माँग हितानी गुरु नासे दानना
1: एक याने
0: नीलमाया वगैन गुरु नासे हुंदटा दानना उन्दे टेका पाऊ गन्न उन्दे प्लान कुत्ते ना
1: ये दिलों का यहाँ एक गत्ता मापी टा आये देगे नहीं तीव्र नवानी मैं इधर बसे अभी तो ताऊ गुरु नांसे की ने कोई अन्न वेनो मैं गुरु नांसे की माया वा आपोगन
0: अने गोंगा अने अंबे मैं एक अभी काटवा देने नहीं बोलांग एक ही बाली अभी बेदा करना याने
1: बेदा करना
0: बेदा कर
1: वांग इतना लोक का दाने बदा करने इतना है कीला
0: अरे इशुमा मधुबाला नियं कहता भी देर ही ना बिन्ने माता मर दीने वजह कला बोटा हरी में सातु टूईने
1: नहीं इतनी लोक का किसी वजह में माता वाद देन में क्या मती नहीं एवे के माया वक में दागन में क्या मती वेन वकियन ऐ एक अमन लोक का मुद्दे दी दी ना
0: मैं देखूंगा मैं तमुंगर मांगे ना किये बुदे हारी है ना हारी वो ये बाले ये बेदागन क्या मती ने इगर मांगा हो दिए ना वैन में बैठे पीली वाला
1: वैन में बैठे पीली वाला ये मुखाद्दो लोक का ये
2: सुनंदे आपे कोहे आपे मंडा बसर चढ़ जाने बेन महानुवर
3: महानुवर बेन नट में एकम प्रश्न है विलने नुवरे आने का वाद देने इधर दें हरे मेहमाय आपे नुवरे आमू लबन सती दावसक दागना नेद देंग विसी नाव विन दाने कैंडी सिटी सेंटे के पोद्दक में पटान गाने आपे काटिया देंग लबन सती दावसक दागना यामू हाद हाने
2: हाँ हाँ मैं लंगड़ी बतावा सा
3: ओह नेता देंग मैं याद विषयात हेता विषय नावे हेता पटान का नव कैंडी सिटी सेंटर महानुवर पोद्देक म इतने ऐनिसा तमाय मैं आपी मैं दावस टिके म क्यों वेंकर करने के अलावा कुछ दें दीर्घ के निवाड़ो आपने मैं निवाड़ो ने इध दें मामा क्यों कालिंग इंदम ट्रिप का क्विदे हट लास्ट कर गत्ता नाम पारिस समिंग गिहिंग एन पुलो बंदारो बेले गिहिल्ला पुष्पा राम टे गिहिल्ला पोसुन कलापे बालला ये विशेषांगा ते क संबंध वेला पिन रेस कर गे न वो कोम कर गे न कांदो उड़ाट महानुवर पोद्देक मटे आंटे पुलो आंगने जूनी विसे नावे क्या हेट पटन गानवा जूली पास तवेनकांगते नवा पिट दवसा वेंकर गान पुल पैंची मुकद पासे ने तवे नकांगते नवाने कैंडी सिटी सेंटर के टेन नको नोन देने किए वो मटे समाजे पेलगासन मेवसरे कांदो उड़ाट महानुवर पोद्देक म संविधान ऐतिंग ओगुलो दानो श्रीलंका पोत प्रकाश केंगे संघ में दहान नाव विनु बारे टे संविधान कराने ඒ වගේම සම සංවිධානය කැන්ඩි සිටි සෙන්ටර් අපි ඊනෙත් FM හැමදාකම හරි ආදරෙන් ගෞරවයෙන් අත්වල් බැඳගෙන ඉන්නවා. ඉතින් හම්බ වෙමු එහෙනම් කැන්ඩි සිටි සෙන්ටර් එකේදී මොන දවසකම හරි. ඒ කියන්නේ 29 වෙනිදා ඉඳලා ජූලි 5 වෙනිදා අතර කාලයේදී අපි හම්බ වෙමුකෝ.
4: කලබල කලබල කලබල කලබල කලබල පෙන්චා
5: FM අනුපහ अनु हतराई दशम अठ नेट एफएम दिवैन पुरा
2: 7:23.
6: BYD C-Lion 5 Plug-in Hybrid SUV. Vedi ita aakarshane penum sa DMI thakshane samaga upe kamunata suvisheshi bavak ekkara ganna. C-Lion 5 mul laithi karuvet venna apake pradarshanagara vata pivisenna. Natnam amathanna 0112-125-125.
7: Mobitel roaming plan ekak activate kara. Dina 5kata nomile namathan pahasukam sahita guwan ticket pat 2k dina ganna. Activate kirimata #999# amathanna. Wedi vistara www.satmobitel.lk vethim.
8: Engineer Lekridiata, Mudaletavada, Prometheus, Magi Wagakima, Navina Takshane, Apemratidi, Sieta Siak, Pirisidu Bilefalin Mahadranisai, Mama, Melva RV Pansia, Vishwa Senil Deshakrani.
9: Melva Eker, Lankavi Eker, Apima Eker.
10: Finishing Vahala, there's a color of flow at a pena.
11: Sit Pedagani, Kalpavati, Avalakshana Novi, Oyat Palet of Washington. Finishing Vahalaknam, color of Samai.
12: Bicycle ගන්න කොහමද මූලික ලීසින් මුදලත් වැඩි වෙලා
13: බය වෙන්න එපා වැඩි වුණු ලීසින් බර සැහැල්ලු කරන්න KD Rice අපි දෙනම විශේ෷ සහනයක් තව KD Rice Leader 125 bike එකට discount එක ලක්ෂයක් කතා කරන්න 077 406 43 97 අලුතෙන කාටම මිල කසාගල ග්‍රීන් සුපර් ශකා මාදලේ අතුරු ක්‍රිය මුල් ඒරියාවන ආරම්භල ගනි මුල කම්පොල කසාගල ග්‍රීන් සුපර් ඒ විතරක් නෙවෙයි ඔබ යටි ඇති මුදල් සුරක්ෂිත ආයෝජන ක්‍රමයක් ඔස්සේ යොමු කර වඩා තිහල ප්‍රතිලාභ ලබා ගන්න දැන්ම කතා කරන්න කසාගල ප්ලාන්ටේෂන් බිඳුව 11:27.87 කසාගල සමුහ ව්‍යාපාරයේ වෙතින්
14: මෙල්ටෝල් හිස රතය උණ සෙම් ප්‍රතිශාව ඇඟපත වේදනාව අපහසු දින සඳහා ඉක්මන් සහනය මෙල්ටෝල් පැරසිටමෝල් විශේෂයකි
15: දන්නවද දමදේව වන්දනාවට හොඳ ආයතනයක්
16: ඔව් මන් දන්නවා Travel net.
15: අවබෝධයෙන් සීලු පහසුකම් සමග ආරක්ෂිතව වන්දනාවට සුදුසු තැන පිටත්වීම අගෝස්තු සිට දෙසැම්බර් ට්‍රැවල් නෙට් අමතන්න 0112-863-363-076-716-3872
5: FM Anupaha FM Anuhatarai Dashuma Ata Net FM
17: සතර සිසත්ත ජයමග විභාග පූර්ව විශේෂ ප්‍රකාශනය දැන් නිකුත් වී ඇත. අරගන්න කියවන්න දැනගන්න ජයගන්න සතර
18: SIBC International Buddhist College නවතම ශාඛාව හෝමාගම දේවි වෘත කරේ SIBC පිළියන්තල අවිස්සාවේල්ල හෝමාගම බිබිල 071 898 0898